0: बधाई हो कोमल बहन, बधाई हो।
1: लगता है माता ने आपकी सुन ली है,
0: आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी।
2: कहाँ पंडित जी, नहीं सुनी माता रानी ने हमारी।
3: हेलो, सॉरी हंसराज जी, हमारे कंपाउंडर ने आपको गलत रिपोर्ट बताई है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है।
4: प्रेग्नेंट?
0: मैं ना कहता था माता।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान छिंधी छिंधी यक्ष ब्रह्म

महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबंधन मोक्षणं कुरु कुरु शिरः शूल गुल्मशूल

मुरलीधर, तुम बड़े निठुर हो। इतनी पूजा करने पर एक पत्थर भी पसीज उठता है, और तुम हो कि चुपचाप खड़े खड़े देखा करते हो। लेकिन सुन लो गोपाल, मैंने भी ठान लिया है

बलि हनुमान जी इन दिस भजन दुनिया में देव हजारों हैं इन दिस वर्ल्ड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड बट द फॉर्म ऑफ हनुमान जी हाउ कैन वी डिस्क्राइब हिम व्हाट कैन वी से ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स एंड डिवोशन हिज ग्लोरीज आर सो मैग्निफिसेंट ये सात समुंदर लांघ गए ही लेप्ट अक्रॉस एन एंटायर ओशन एंड पेनिट्रेटेड द फोर्ट्रेस ऑफ रावण पर्वत को थाना लक्ष्मण जी को जिलाना He lifted a huge mountain to obtain the Sanjeevani herb, saving Lakshman's life. Siya Ram ki jori baithi hai, Shri Ram and Sita Devi are seated in his heart. How can we even begin to describe his greatness? Jai Bajrang Bali.

0: उठो, इस्तेमाल करो हाथ पाओ, माउंट एवरेस्ट पे जाओ, मून पे जाओ, यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अफीम, चरस, गांजा के बीच गुनगुनाने से कुछ नहीं होगा।
1: अगर यही भक्ति है, यही भगवान है, हरे राम हरे कृष्ण जिसका जप जपते रहते हो, तो उतार के फेंक दो इन मालाओं को, बहा दो इन फूलों को बागमती नदी की धारा में, वहां ज्यादा शोभा देंगे।

0: St. Ives Street, opposite the Charleville taxi stand. Prem Singh's. It's a family tradition. Serving the nation and Dharma. Call 663-6084.
1: एक बार बोले श्री गजानंद स्वामी की जय, अयोध्या पति रामचंद्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सीताराम डिवोटीज एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इन स्टूडियो कथा। फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु आर लिसनिंग एंड व्यूइंग अस ऑन द जागृति नेटवर्क, शुभ स्वागतम, वेलकम टू वन एंड ऑल। इट इज इंडीड माय प्लेजर टू बी ब्रिंगिंग यू दिस कथा हियर टुनाइट। वी फोकस आवर थॉट्स ऑन प्रभु श्री रामचंद्र जी, लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ ऑल क्रिएशन। ओ प्रभु, यू आर द आइडियल मैन। You showed us how we should live. Do have mercy and compassion upon us all, and do shower your grace and blessings upon us. Devotees, at this time, I would like to ask you all to please, wherever you may be, to bow your heads, close your eyes, and focus your thoughts on that perfect being of Prabhu Sri Ramchandra Ji as we make Vandana.

एक बार बोलिए श्री गजानंद स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, आदि शक्ति दुर्गा महारानी की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, महासरस्वती माता की जय, गुरु व्यास महाराज की जय, एक बार बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय। Devotees, let us all join in this beautiful bhajan dedicated to Sri Ganesh Ji. His blessings should be sought first in any favorable undertaking for it to be a successful one. Please join with me.

सिद्धि विनायक गणेश गणपति भगवान की जय। इन दैट भजन इट सेज दुख दरिद्र नहीं आवत द्वारे। दैट इफ वी सिंग द प्रेजेस ऑफ श्री गणेश जी विद फेथ लव एंड बिलीव इन आवर हार्ट्स दैट दुख ट्रबल विल नेवर कम टू आवर डोरवे। Devotees, we focus our thoughts on Shri Krishna, Maryara Purushottam Shri Krishna, the one who revealed spiritual wisdom in the form of the Bhagavad Gita to Arjun, not only for the benefit of Arjun, but for the benefit of all mankind. He came on this earthly plane not only to destroy evil, but to establish dharma. Let us focus on that beautiful form of Shri Krishna. This bhajan describes the beauty of Shri Krishna.

बादल पृथ्वी के निकट आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट को पर्वत वैसे ही सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचनों को संत।